त ए ऊ मौसम दी गाल है त झाड़ भी आई बहु ठंडी ठंडी हवा आई कितां कितां बर्फ ही सर्दी दी वजह कन जमी पई आई बालन दे हाथ पैर फुटे पया हन बदन दी खुरिया फुटे पया हन इतना सी आउंदा है दोस्तों ज्यादा सी दे विच हाथ पैर ही फुट पैंदे हन बदन ही फुट पैंदा है इतना सी आउंदा है त कितां टुबड़ां दे विच पानी खड़ा होया बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बर्फ ही ना पैंदा सर्दी दी वजह कन ज्यादा सी दी वजह कन त एक जमींदार आई जैंदे विच अपना जमींदार मलिक आई उंदा नाम मलिक परपीटोन साहब जरा मलिक आई जमींदार आई बड़ी काफ़ी दौलत है काफ़ी सोना हास काफ़ी माल हास काफ़ी हर शह लेकिन इन कशे की कमी कौन आई इसी सियाले दे विचो दोस्तों ये बैर गई है जमीन दो गई है चंगी सर्दी आई बड़े कंबल शंबल पा के गई लेकिन उंदा सी वाती कंट्रोल नहीं थी सी दे विच ओ थड़कदा वधा ही हो लेकिन गिया हाई बैर अपने जमीन दो चक्कर लावन मेरे सोने सजनो गाल गौर नाल सुनो कि वह जमीन ते गिया है लाणा बूटा दे विच या कै बूटा दे विच एक जबरदस्त मीठा और वड़ा खरबूजा उंगोल है बहु अच्छा खरबूजा एक वली दे विच लुका पिया है ते इं डिठा है कि ये खरबूजा पिया है वाह बेमौसम खरबूजा मौसम कह रहा है ते खरबूजे कह रहा है खरबूजा ते चंगे रते तते गर्मियाँ चाहता है ए एडी सर्दी दे विच खरबूजा ओ इतना वड़ा और इतना मुश्क आंदा पिया मिठास कण कि देख दे जी मिठास कितों आँदी पई है ए मुश्क कितों आंदा पिया है लेकिन ऊ नाल मुँह नाल नीतस नक नाल सुंगस तो ए खुशबू खरबूजे दी इंदी फैली पई है सारी जमीन इच इतना मीठा खरबूजा ते बहुत वड़ा हाई बड़ी मोटा हाई ते बड़ी तादाद नाल लंबा हाई दोस्तों ई दिली सोचा कि मैं एक नेसा अपने चौंक ते या बैठक ते इंदा मैं मुकाबला करे सके मैं बेमौसमा गिन आया एक घर तो रखे सा पहले मैं गाल करे सा ये मुकाबला या शर्त लासू ते इंशाल्लाह ये शर्त मैं गटे सा ई खरबूजे दे जरिए दोस्तों मलिक परपीटोन साहब जरा है घर तो गिन गए उंदी मलकानी मासी फिडी साहब दोस्तों मलिक परपीटन दी मलकानी जेरी आई मासी फिडी ऊ को आखोस ए खरबूजई ई को रख आराम करके मैं बहना चौंक ते इं खरबूजे दे जिक्र मैं चौंक इच करे सा सारे शहर आले बैठे सन खिल गपी थी वैसी शायद इं शायद दा मुकाबला वंजे कि ओ नमन ते मैं कह सा मनो नहीं तक कोई शर्त लाओ चो मैं सको खरबूजा दी कहना ऊ मासी मलकानी फिडी ने खरबूजा रख छोड़ा मलिक परपीटोन साहब गया अपना चौंक ते गया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सारा के आ मलिक परपीटोन साहब आज कितावे ऊ आके पूछो नहीं भिरा आज तो मैं जमीन ते गया बैर गया कि एक अनमोल शह मैं लभिए अनमोल शह गिनाया लेकिन तू साडा दिमाग न मने सी तो उन आख है मलिक परपीटोन साहब क्या शह तय गोलिए कि साडा जहन न मने सी क्या है इमें कोई अनमोल खजाना मिलाई दौलत मिली हुई या कोई जानवर न पे जरा सनी डिठा ऊन आखे नहीं कुछ भी इवें नहीं जरा सारे जहन चे तुसा मनो या न मनो मलिक परपीटोन साहब आखेंद है उन्होंने को कि मैं एक बहुत मिठा ते बहुत वड़ा खरबूजा लभ है ते मैं बड़ा बहुत खुश हाँ ऊन आखे मलिक परपीटोन साहब ए क्या आखदा पिया कूड़ नला एक धुंधा को देख बर्फ को देख घाटी सर्दी को देख असा कमरे दे विच कोठी दे विच भाप वाली बैठे वाती सी कवर नहीं थी मलिक साहब ए सा खरबूजा था गर्मियां दी शाय तू कि मलिक परपीटोन साहब आख्या कह साहब सुनो मैं सगो सच आखदा कि मैं खरबूजा लभ है दोस्तों ई गल ते हल चल मच गई है पूरी बैठक हलन पै गई है कि सर्दियां दे विच खरबूजा ए साडा दिल ही नहीं मनेंदा मलिक परपीटोन साहब आख्या कि यार कुछ शर्त ला दो मैं सगो हूं आने ना चाचा बशकू बैठा ही चाचा बशकू आख्या कि शर्त लाना मैं लाना मेरा दिल ही मनेंदा कि स्याले दे विच खरबूजे होंदे न ऊं आके स्याले च खरबूजे बिल्कुल होंदे न मैं सगो दिखा सकदा चाचे बशकू ने आके कि मैं तो गरीब आदमी हाँ तू मलिक है तू तो हर शायद तैकड़ वस फरद है मैं कहना तो वस कौनी तो मैं शर्त भी लाना तेरे नाल मैं मुकाबला करे ना तैकड़ मैं खरबूजा देखना चाहना दोस्तों मलिक परपीटोन ने आके ला शर्त बशकू ने आके चाचे बशकू ने आके मलिक परपीटोन तू दस क्या शर्त होवे मलिक परपीटोन आके कि तू दस तू केरी शायद है तू आखने कि मैं गरीब हाँ केरे वस ही भी तू मैं कुछ शो कर दे केश से अगर मैं हिर गियम था अगर गट गियम तो तू मैं को केश से बशकू चाचा शेरू आख चाची शेरू बशकी आख चाचे ने कि देखो अगर मैं हिर गियम

मेरे घर सिर्फ ही का सुबह गां खड़ी है जेरी हिक टाइम ते 9 किलो यानी कि 9 शेर खीर दे दिए ए गां मैं तेको इनाम ही देसा अगर मैं हिर गियो। चाचे बश को आका है ए मलिक परपीटन तू अगर हिर गियो तो तू के शदेस है। मलिक परपीटन आगे के मैं मलिक परपीटना मेरा शार ही ना है जेरी शह ते हाथ रखे से उवा शह तारी तेरा शार सारा खड़ा होसी शार दे अगू मैं ऐलान करे सा। मलिक परपीटन आके के मैं सारा ऐलान करे सा के चाचा मैं बशकू ये शह तै को खुश होवे लेकिन रखे से ऊ शह ते हाथ उवा मिलसी लेकिन मतन आके जे छी ते 12 ते 13 शयां ते हाथ रखी वदो ते ए मैडी ते ए मैडी ते ए मैडी शर्त ए के हिक शह ते हाथ रखे से ता वन के उवा शह तेरी बिल्कुल ता हां के थी सकदे के तू मेरे सिर ते हाथ रख मैं कोई तू गिन वैसे मैं तेरे इंदी मुकाबले छीर वैसे तू मैं को गिन वन जेरी शह ते हाथ रखे से घर दी सारी जेरी जिसत है जनावर ऐशा भी है ऐशा तक नजर आसी तू रखे से। दोस्तों ई दौरान चाचा बशकू जे रहे इंदे जहन च आ गए क्योंकि उंदे शारदाई मलकानी फिडी मासी दे जेवर बहुहानी सोना बहुहाई यानी के इतना सोना ज्यादा सोना आई मलकानी फिडी मासी दा के गले बंद हुंदा हाई कटमाला भी हुंदा हाई झारियां हुंदियां टिक्का हुंदियां आई सिंगार पट्टी हुंदियां आई छापा हुंदियां कंगन हुंदियां छापा ते कंगन दे नाल बीच जेरा चंबा हुंदा है ओ भी उस सोने दा आई पंजेब भी हन हालांकि अधे तोले तोले दे शैया नन बने यानी के हर शह हर जेवर डूडू ते अढ़ाई ढाई तोला दई सारे शार को पता है चाचे बशकू को भी पता है तहिया के मैं वैसा दिली चाके कि मैं वैसा मलिक पर पीटन दे घर क्योंकि मैं नल वादा कीता बल्कि सारे शार नल वादा कीता कि ये शते हाथ रखे सा ओ मैडी मैं वैसा तो अपना ऊ जेवर आले बक्से ते हाथ रखे सा। चाचा बशकू दिली चिया सोच गए कि बस बक्से ते हाथ रख के बक्सा चाके सारा सोना मैडा ए मलिक पर पीटन मेरे धूड़ी ची नन आजादी मैं मलिक बन वैसा तो इं आके मलिक बशकू ने आके के बिल्कुल मलिक पर पीटोन तेरी शर्त मैं को मंजूर है वन गिनान। दोस्तों बड़े जज्बे नाल आया घरिच मलकानी फिडी मासी को आके के आ ओ कखबूसा दे मैं बहुत सोनी गां तेरे गोलिए मैं मुकाबले गट्टी पिया एक टाइम दे 9 शेर खीर देंदी वे नाला नाले वछी भी हिस बड़ी जबरदस्त असील गां है ते गां मैं तेरे नामे करेना बस ये मेरी खुशी है मैं आज ये खुश हां ये गां तेरे नामे मैं तो खरबूजा घिनन जो मैं घिन वणा चौंक ते मेरे सोने सजनो देखो हालात को देखो इंसान नल केरी थी वेंदी है मलकानी फिडी मासी क्या कह मलिक पर पीटन को मलकानी फिडी मासी आके के ए मलिक पर पीटन अफसोस मैं खरबूजा रखाई लेकिन बालैन खरबूजा खा गए ते कुछ वे मैं भी खा दे बहु मिठाई खरबूजा कोनी भी मलिक पर पीटन दे पैर तलू जमीन निकल गए दिमाग उरण पै गया हाथ पैर कम छोड़ गए ऊ आके मैं कुछ दौला दा गम नहीं मेरी बदनामी थी वैसी कि भरी चौंक दे विच भरे शार दे विच मेरा ना बदनाम थी कि मलिक पर पीटन साहब मलिक ही शारदा लेकिन अज कूड़ा थी के निकले ए दौरान मेरे दोस्तों सुचेंदा सुचेंदा सुचेंदा इन दौरान इंदे अकल इच गाल आई है इं आके चलो खरबूजा खा देने तो इं आके मलकानी फिडी चलो खरबूजा तो खा देने गलत कम तो की थी मैं को ओ छिलड़ दे ते बीज दे मैं सबूत तक घिनवाजा चौंक दो लोगों को दिखावा कि मेरे बाला खरबूजा खा दे ए सबूत ही भी बीज है तो ए छिलड़ भी इन खरबूजे दे मेरे दोस्तों सोचो गाल दो सोचो इन कहानी दो लेकिन इन दौरान मलकानी फिडी की आग दिए ए मलिक पर पीटोन तू छिलड़ मंग दें खरबूजा असा खा गए छिलड़ ते अपना जरा बीज आई ओ बकरी खा गई है हूँ इन दा दिमाग फिरा मलिक पर पीटन दा मेरे सोने सजनो सोचो मलिक पर पीटन अजीब कशमकश च रह गए इंदे होश आवाज उड़ गए नी जानना कि मैं मलिक हाँ आम आदमी हाँ क्या थी ना पे मेरी इज्जत नीलाम थी नी पे सारे शारिज। दोस्तों इन दौरान च ए गाल जेरी है इर्द गिर्द सारे ध्यातन फैल गए नाले आस पास गवांडी जेरे शार हन उन्ना ची फैल गई है उन्ना ची लोग आवन पै गए जालियां जने आवन पै गए कि फलाने शारिज ए जिया मुकाबला शुरू पिया है कि बेमौसम खरबूजा आया पिया थे शर्तां लगे पैन आओ ए तमाशा देख सू कौन गटेंद है
चाचा बशकू गटेंदा है, मलिक पर पीटन गटेंदा है, क्या थींदा है, क्या नजारा है, आओ अपने अखियां नाल देखसूं, क्योंकि मलिक पर पीटन पेश करे सी चौंक दे विच खरबूजा। लेकिन इनू दोस्तों बहुत अफसोस और गम दी गाल है कि इंदी जाल पहले अपने बाला को खरबूजा खवाया चा, बचे ई खादे चा, वजरा सबूत है हिक छिलड़ ते बीज भी ए भी एक सबूत है, बिल्कुल बेमौसम ताजे पता लगदा जे छिलड़े खरबूजा खादा पिया, लेकिन छिलड़े छिलड़ ताजे बीज भी ताजा, ता एक गाल मनी सकदे ते मलिक पर पीटन ई शायद गट सकदे, लेकिन अफसोस ओ छिलड़ी बकरी दो सटिया ने चाहते बीज ही सटा चा, कोई सबूत को नहीं आई। लोग जमा थी गए, इर्द गिर्द सारा शार भरा थी भर गया है, ढोल आला गया, ढोल मरेंदे पहन के बड़ा ऊंचा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, अनोखा ते नवेखला मुकाबला, इवें मुकाबला था कदे ही नहीं थिया। चाचा शेरू गरीब ते इनू मलिक पर पीटन साहब बड़ा बड़ा अमीर, इंदा मुकाबला थी गया है। मुकाबला शुरू है दोस्तों गया अपना मलिक पर पीटन चौंक ते परुकन लोग हा हो लाड़ते वीरू वीरू करेंदन, हो वीरू वीरू मलिक पर पीटन, वीरू वीरू मलिक पर पीटन, वीरू वीरू। लेकिन इंदू ते ज्यादा दबाव आंदा पिया, इंदा दिमाग कम छोड़ी वेंदा है। लेकिन ई जरा बैठे आया कि मेरे सोने शार आले मेरे सारे सुनो कि मैं ये मुकाबला हिर गया, इवें हिर गया कि खरबूजा मैं आंदा आई, लेकिन मेरे बालों जाल खा दे चा, जरा सबूत रह गया आई वो भी बकरी खा गई, छिलड़ खा गए ते बीज नाले खा गए, मैं कण सबूत कोनी खरबूजा हाई, लेकिन हूँ ई टाइम मैं कण सबूत कोनी ते चाचा शेरू वाली जेरी गाल है, बिल्कुल मैं उन्दे नाल सारे शार दे गुजारा मैं वादा कीता ही, जबान कीती है, मैं भी हिक मलिक हाँ, मैं भी पंचायती बावन आला, मैं हिक चौधरी नमूना हाँ, मेरी गाल मेरी इज्जत मेरा वकार मेरे नाल प्यार मुहब्बत लोग करें दिन, तां बिल्कुल इन मैं बधोया सारे लोगों के रूबरू। लेकिन बत मैं ऐलान करें ना, चाचा शेरू हो या जेरा हो या, मेरा ये ऐलान आई कि मेरे घर जीसत जमीन इच पैसा दे विच जेवर दे विच सब कुछ ये शह ते हथ रखे सी, यह मुकाबला गटा ओ शह को मिल सी, और मैं ई शह दा पाबंद हाँ। शेरू दे अक्ल ही चाहिए कि बज इतना जल्दी थी वे ते मैं सोने वाले बक्से ते हाथ रखा ते सोने दा बक्सा मैं अपनी जान दुख लेते मैं अमीर थी वैसा, इतना नेमा तुलाई खड़ाई हूं दई हाँ सड़दा आवे जी, चाचा बशकू जरा माल नेंदा पिया ना मैडा हाँ सड़दा आने दोस्तों मेरे सुनने वाले सजनो। ता शेरू मलिक पर पीटन ते अपना मलकानी फिडी घर बैठी आई, सोचन के क्या कर बैठी हाँ। लोग जमा थी गया, मलिक पर पीटन दे घर वेंदे प्यान, लेकिन चाचा हिक बिया चाचा लुंदा हाई ऊ शार देवी चाचा लुंदा, ओ कनिच गाल कीती है चाचू बशकू को इवें करें, ए नादान तू मेरी गाल सुन, ऊ आके इवें कर के तू जेरे वने तो ऊ इंदे घर दा जेवर है, अगर ते को बक्सा न मिला ता थी सकदे ए अपनी मलकानी फिडी मासी को पवई बैठी होवे, ता ऊ जेवर ते अगर ते को चासे तो अंझा लग पे कान च अंझो सी, मथे ते अंझो सी, गिची च अंझो सी, पेरा च अंझो सी, छापा होसन कंगन होसी, सारा ते तू हथ नहीं सके, इंदी जेरी शर्ती भी ना चाचा लुंदा लाई पियास, चाचा लुंदा लाई पिया जी उंदी जेरी शर्ती हूं आके जेसे ते हथ रखे से ओ तैडी। दोस्तों मेरे सोने सजना वाह चाचा लुंदा लुंदा आदमी हमेशा दिमाग दा तेज होंदा है, ओ ढिड दे वास्ते हर जाते लड़दा है, हर जाते जा ना जा को देखदा है, कोई सडेस या न सडेस, कोई किशाय देवेस या न देवेस, ए लुंदा लुंदा थींदा है, आखिर इतना इतना लुंदा लुंदा थींदा है कि अपने ढिड दा सामान या अपने ढिड को पलेंदा चाहे अपने ढिड दी शह गिन के ते तां रांदा है। चाचे लुंदे को आकस तू इवें करे मेरी गाल मान, तू गटे छे मलिक पर पीटो ने ऐलान की ते ये शते हाथ रखे से ता ओ शह तैडी पहले कमरंज फिरे सोने दा बक्सा गोले, सोने दा बक्सा गोल न लबे, अगर न लबे ता वत मैं तक बई भी गाल करे सा ते मलिक ये मलिक को छोड़ आ हूं मेरी गाल सुन, अगर तू अमीर थी गयो सोना सारा तैडा बिल्कुल हर शह तैरी थी तू अमीर थी वैसे, लेकिन नमतुला भी आ रही सुन खड़ाई तब तू आके खैरात करे से ते नमतुला आ कह सके चाचा बशकू सोना सारा अगर ते को मिलवाजे ते तू केशा करे से कैनल दे गिन यारी दोस्ती संगत सलामा लेकी होसी के नोसी, ता ऊ आखे ना
मैं सारी जिंदगी ओखी लंघाई है। ए अगर दौलत सोनत मैं को मिल गया तो मैं अपनी जान आपे पलेसा। कहना बस मैं अपना बंगला घर सब कुछ करके मैं घर बह के खासा। अगर मैं को अगर मिल मंजे ए जहान छोड़ दे सा। दोस्तों ई कहानी को इतना ही खड़ा दो ए जहान छोड़ दे सा ते एक दफा मैं को मिल मंजे सोना ता ई दौरान मेरे सोनो मैं गालियां बम कर चढ़ूं। ये कहानी बस पूरी थी वन वाली मेरे नाल नाल रहो। आओ एक सॉन्ग सुन दिया तसवर खानम दी आवाज है। ओ भी मैं खेंदी है कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। चाचा बशकू भी आके अगर ये दौलत मेरे को मिल गई सारे जमाने नाल मैं कट दे सा हर शायद छोड़ दे सा। बस मेरी दौलत मैं जाना ते मेरी दौलत जाने। ई वास्ते तसवर खानम दी आवाज है। आओ नाले सुर को ओ भी तसवर खानम ही ओ भी ये आखेंदी है अगर

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

से लेकर आज तक मैं इश्माराई स्पेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्माराई स्पेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर सकते हैं।

0: सस्ता होता है और खुद बहुत बढ़ जाता है। इस्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, भूख की कमी।
1: 8:04 आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन, जन रंग अमन।
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
3: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारस होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
5: रोजाना 4 से 5 बराह रास्त स्टे विद अस।

जनाब दीन स्टेशन और एक आवाज और इसी आवाज सेम आवाज एक आवाज जो कि आप सुन रहे हैं पिछले एक माह से तीनों रेडियो स्टेशन के ऊपर एक साथ, जो कि आवाज है केसन की, जो कि आवाज है खूबसूरती की, जो कि आवाज है सेहत की, जो कि आवाज है शिफा की। जनाब एक नए दिन के साथ 1 जून 2025 और सोमवार का दिन है जनाब 2026 सोमवार के दिन है 4:05 हुए जाते हैं इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और जनाब अगले 55 मिनट में आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ, ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ करेंगे, ढेर सारा हल्ला गुल्ला, ढेर सारा फन और ढेर सारी मजे मजे की बातें, वो बातें जो आपको कभी कभी सुनने को मिलती है। तो जनाब इन तीनों स्टेशन डेरस मिलखान पहाड़पुर रिटांग के अंदर सुनने वाले तमाम कजन बॉयज अंकल नानी चाचा चाचीज मामे मामी दादा दादी एंड नाना नानी ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों को खलील दावे शमान का सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारे नेक तमन्नाएं और ढेर सारे सलामती की दुआएं आप सभी के नाम। जनाब मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जिस तरह मैं अभी कुछ फिट फाट A1 सेहतमंद चमकदार चमकता हुआ दमकता हुआ फाइन एंड शाइन हूँ, बिल्कुल मेरे जाने वाले मेरे तमाम फ्रेंड्स मेरे तमाम दोस्त तमाम लिसनर्स तमाम के यूज जनाब बिल्कुल खैरियत से होंगे, जनाब अफियत के साथ होंगे और चाय के एक कप के साथ, चाय के एक प्याले के साथ जनाब जो कि मेरे सामने आ चुकी है। और आज चाय मुझे थोड़ी सी जल्दी मिली है और इस वक्त मेरी आधी से ज्यादा भी चाय का कप जो है वो खाली हो चुका है। आपके यहाँ चाय की क्या सूरत हाल है जनाब, क्या है वो चाय भाई मिल चुकी है आपको या नहीं मिली है या क्या सूरत हाल है, तो जनाब जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चाय का हाल हवाल भी दिया करें क्योंकि जनाब ये जो टाइम है ये चाय का वक्त है जी, तमाम इलाकों के अंदर डेरा इस्माइल खान डांग और पहाड़पुर के अंदर ये वक्त मुख्तस होता है जनाब चाय के लिए। सो इसलिए हमने अपने शो का नाम भी टी टाइम रखा है, केसन का टी टाइम शो।

जनाब टी टाइम में आपको ढेर सारा वेलकम है और केसन का ये प्रोग्राम है जनाब। हर रोज हम महफिल सजाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान इतनी प्यारी कंपनी है और इतना प्यारा सोचती है आप लोगों के बारे में कि आप लोग भी इस कंपनी की सोच को समझ जाते हैं। आज मैं अपनी टीम के साथ जो है जफराबाद के अंदर मौजूद था, तो वहां पर हमारा एक सेल पॉइंट है जफराबाद में। जो लोग ग्लोबल एफएम 91 को सुनते हैं या जो है थोड़ा बहुत वो 97 को भी सुनते हैं कुराई के इलाके में, जफराबाद के इलाके में, तो वहां पर हमारा एक सेल पॉइंट है जिसका नाम है हाजी जर्री स्टोर। ठीक है जनाब, हाजी जर्री जनरल स्टोर जफराबाद के अंदर ये हमारा पॉइंट है। उसके साथ जो है फैसल मार्केट के अंदर फारूक जनरल स्टोर भी है, फैसल मार्केट के अंदर इब्राहिम जनरल स्टोर भी है, असमत जनरल स्टोर भी है और अब्दुल रहमान जनरल स्टोर भी है, और इसके अलावा बंकेश प्लाजा में कारी जनरल स्टोर भी है। तो जनाब आज हम वहां पर मौजूद थे, तो कुछ अर्सा पहले जब हमने कंपनी को लॉन्च किया था तो उस वक्त हमने एक सेल पॉइंट बनाया था जफराबाद के अंदर, जिसको हमने मिनी केसन शॉप कहा था कि यहाँ पर आप जाया करें जनाब, यहाँ पर आपको हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। और वो दुकानदार भी बहुत ही अच्छा था उस वक्त, ठीक है, वक्त बदलते पता नहीं लगता भाई। तो जनाब क्या हुआ कि वो मिनी केसन शॉप बन गई और बहुत ज़्यादा हमारी सेल तकरीबन एक महीने के अंदर हमारी वहाँ पर सेल जो होती थी 50-60 हज़ार सेल एक दुकान के ऊपर होती थी। बीच में हमारी टीम के साथ लड़कों के कुछ मामला जो है दुकानदार के साथ कुछ गड़बड़ हुई कि हमें वहाँ पर स्टॉक बंद करना पड़ गया, तो हमने वहाँ पर स्टॉक जफराबाद की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हमने स्टॉक देना बंद कर दिया। अब चूंकि वहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, हमने उसको मिनी केसन शॉप बनाया हुआ था, तो जनाब लोग जब वहाँ पर जाते थे तो उनके पास स्टॉक तो नहीं होता था, क्योंकि हम नहीं देते थे उनको स्टॉक, केसन के प्रोडक्ट हम उनको नहीं देते थे ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है जनाब, हमने सामान वहाँ पर देना बंद कर दिया था, सिवाय उसके बाकी सारे जफराबाद को देते। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा यार ये तो कस्टमर मेरे पास हर रोज आते हैं तो क्यों ना इनको दिमाग खराब किया जाए और इनको कहा जाए ये कंपनी के अंदर कोई मसला था। ठीक है जनाब, हमने कंपनी छोड़ दी। अब सियाने लोग जो है उनको तो समझ आ गई कि भाई कंपनी का मसला होता तो पूरे जफराबाद में कंपनी ना होती, एक दुकानदार के साथ क्या इशू। एनी हो, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। तो आज हम वहाँ पर ठहरे हुए थे तो ऐसा जिक्र हुआ, तो उसने कहा भाई एक दिन मेरे पास आपका एक आया लिसनर, तो वो उसी दुकान से होकर आया, तो इधर जब हमारे पास पहुंचा तो उसने कहा कि भाई यार मैं पहले वहां से लेता था केसन के प्रोडक्ट ना, अभी वहां पर नहीं है, लेकिन वो तो कोई और कहानी बता रहे हैं। ठीक है जनाब, नेगेटिव किस्म की कहानी। तो क्या ये सच है? तो आप यकीन कीजिए, अल्लाह को जान देनी है, पहाड़पुर वालों और टांक वालों और डेरा इस्माइल खान वालों, ये उस बंदे के वर्ड हैं जो मैं आपको इस वक्त बताने जा रहा हूँ कि मेरा सीना जो है चौड़ा हो गया वहाँ पर उस दुकानदार के सामने खड़े होकर जब उसने ये बात की। उसने कहा आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में मैंने उस बंदे को ये बात बोली कि वो जो सामान खरीद रहा था, मैंने उसको कहा कि ये इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, ये हाजी जर्री से आप पूछ सकते हैं कि आपने ये बात खलील भाई को की है। उसने कहा कि मैंने उस नौजवान से कहा जो आपकी चीज़ें ढूंढ रहा था और उसको किसी ने कहा था कि मसला है तो केसन के प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो उसने कहा कि वाकई कोई मसला है, तो मैंने कहा भाई ये इतनी प्यारी कंपनी है कि इसका स्टैंडर्ड जो है ना बड़ी कंपनियों जैसा है, ये बिल्कुल हमारा नहीं सोचते हैं, ये बिल्कुल भी दुकानदार का नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने ग्राहक का सोचते हैं कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनके प्रोडक्ट रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि भाई इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। अब उसने कहा कि मैंने उसको मिसाल दी, मैंने कहा इनका जो साबन है ना वो 170 रुपये का है, यानी कि हमें 170 रुपये का मिलता है, उसके ऊपर कीमत 200 रुपये लिखी हुई है। अब कौन ऐसा बंदा है जो हमें पूरे 200 रुपये देगा? कोई भी हमें 200 पूरा नहीं देता, कोई 190 देता है, कोई 180 देता है। तो आप सोचें कि 200 रुपये की चीज़ के ऊपर केसन से हम 5 रुपये कमा रहे होते हैं, परसेंट कमा रहे होते हैं। ठीक है जना, लेकिन इस कंपनी की हमें समझ नहीं आती कि ये दुकानदारों को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाते, दुकानदारों को कोई इतनी बचत नहीं देते, लेकिन फिर भी इनका सारा फोकस जो है वो ग्राहकों के ऊपर है और ग्राहक इनके पागलों की तरह जो ना केसन को ढूंढ रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसने कहा कि बिल्कुल इस कंपनी के अंदर कोई दो नंबरी नहीं है, ये दुकानदार है हाजी जर्री। उसने कहा मैंने उसको कहा कोई 1% हमारे पास आज तक इसका ग्राहक के 10 कंपनी अगर कोई इसके पीछे प्रॉपर गंडा घाती मसला है कंपनी के साथ, कंपनी के किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला, और इतनी कम कीमत के बावजूद एक साबुन जो 200 रुपए का मिलता है ना बाकी कंपनियां 80-90 रुपए बचत देती हैं। लिसनर्स, जब 200 रुपए का साबुन होता है ना उसके अंदर कंपनी दुकानदार को 80-90 रुपए की बचत दे रही होती है आम कंपनियां, और हम दे रहे होते हैं 20 रुपए की, 10 रुपए की बचत, टोटल 30 रुपए की बचत दे रहे होते हैं, जिसमें से आप लोग 10 रुपए रियायत करवा लेते हैं, पीछे उसको 20 रुपए बचते हैं। लेकिन एक कमिटमेंट है आप लोगों के साथ,
एक वादा है कि आप लोगों को हम खालिस चीजें प्रोवाइड करेंगे केसन के प्लेटफॉर्म जनाब है वो ऑर्गेनिक है और हम खालिस अज्जा जो बरसों से इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके हम आप लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो है आप लोगों को 100% रिजल्ट देते हैं। सामिन इकराम, पुराने वक्तों की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जनाब जब ये दौर नहीं था, जब साबुन नहीं हुआ करते, वॉश नहीं हुआ करते थे, जब क्रीमें नहीं हुआ करती थी, जब सीरम नहीं हुआ करते थे, तो क्या लोग ऐसे बदसूरत हुआ करते थे? ये चीजें जो नहीं थी उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी रोमानवी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी जो हम आपको सुनाते रहते हैं। हीर रांझा की कहानी, लैला मजनू की कहानी, शीरी फरहाद की कहानी, ससी पुन्नू की कहानी, रोमियो जूलियट की कहानी, आज हमने सुबह सुनाई कानपुर वालों को। पुराने वक्तों की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं जनाब आप लोगों को और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि यार ये खूबसूरती जो है ना ये अजल से आ रही है और हर दौर के अंदर खूबसूरती के लिए पाया गया है, उसी को लोगों ने इस्तेमाल में अपने हुस्न ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। जी जनाब, आज पहाड़पुर में थोड़ा सा नेट का इशू है तो वहां पर आपको आवाज, मुझे मैसेजेस लोगों के आना शुरू हो गए कि आवाज कट रही है। तो भैया कि उन्होंने हमें कॉल नहीं था क्योंकि नेट का सुबह से बड़ा इशू है, लेकिन उनका बहुत लाइव पहाड़पुर के ऊपर भी है तो पहाड़पुर वाले थोड़ा सा गुजारा गवा मड़ा। जी सामिन इकराम, तो आप लोगों अब क्या के अंदर लोग जो है वो प्यारे रहते थे तो किस तरह भी उस वक्त तो कोई केसन नहीं थी, कोई क्रीमें नहीं थी, कोई साबुन नहीं थे, कोई फेस वॉश नहीं थे, फिर भी मोहब्बत की इतनी बड़ी बड़ी कहानियां कैसे उस्तवार हो गई। वो कहे कि जनाब एक दूसरे के पीछे मर मिटे।

जनाब ये तीन जादुई स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स है जनाब, ये अगर आपकी 24 घंटे की जिंदगी के अंदर, अगर आपकी स्किन रूटीन के अंदर ये तीन चीजें हैं तो भाई आप मलकाओं वाली जिंदगी है आपकी, शहजादों वाली जिंदगी है आपकी, बादशाहों वाली जिंदगी है आपकी। अगर ये तीन चीजें जाफरान, संदर और हल्दी अगर आपकी स्किन के रूटीन के अंदर है तो भाई आपकी जिंदगी बादशाहों से, शहजादियों से कम नहीं है। तरीके से इस्तेमाल किया जाता था जनाब, जाफरान जो है जनाब कहा जाता है कि ये शाही चमक और सुर्ख और सफेद रंगत जो होती है जनाब, जाफरान को कदीम दौर में सुर्ख सोना कहा जाता था, पुराने वक्तों में इसे कहा जाता था कि ये सुर्ख सोना है। ये इतना कीमती था कि इसे सिर्फ शाही खानदान की खवातीन और शहजादे इस्तेमाल कर सकते थे और किसी के बस की बात नहीं होती थी और किसी को करने भी नहीं देते थे। खूबसूरती सिर्फ शहजादे और शहजादियों और मलकाओं तक रहे। जी जनाब, शाही गुसल और उपटन से मलका और शहजादियां अपने नहाने के पानी के अंदर जाफरान की कॉम्पोनेंट डाला करते थे ताकि पूरे जिस्म की जिल के अंदर एक कुदरती खुशबू और हल्की सी सुनहरी चमक। ये बहुत बड़ा कमाल होता है ये जाफरान का कि आपकी स्किन के ऊपर, इसके ऊपर बिल्कुल कोरियन स्किन बन जाती है, स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा चमक आने लगती है। जाफरान को कच्चे दूध या मलाई में चंद घंटे भिगोकर चेहरे पर लगाया जाता था। ये अमल ना सिर्फ रंगत को गोरा और सुर को सफेद बनाता था बल्कि जिल्द को सूरज की तपश सनबर्न से भी बचाता था। अच्छा, ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है सुर्ख और सफेद, ठीक है जनाब, ये खूबसूरती की अलामत होती है, चेहरे के अंदर थोड़ी सी सुर्खी भी हो और चेहरे के अंदर वाइटनिंग भी हो। तो बेसिकली जो जाफरान है ये दोनों तरह के फायदे रखता है कि सुर्ख और सफेद आपकी स्किन को बनाता है जनाब। तो जनाब ये जो है, ठीक है जनाब, इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, डिफरेंट किस्म के चीज़ों को मुख्तलिफ तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जनाब ये जो जाफरान को कच्चे दूध के अंदर डाल के या फिर मलाई के अंदर डाल के इसको चेहरे के ऊपर लगाया जाता था। ये मलना सिर्फ रंगत सुर्ख और सफेद करता था बल्कि जिल्द को सूरज की तपिश से बचाता था। ये बात याद रखिएगा, जाफरान अगर आप गर्मी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूज समझिए आप नेचुरल सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं। जाफरान अगर गर्मी के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूज समझिए आप कुदरती सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं। एंटी एजिंग का राज, कदीम दौर के जो हकीम थे ना जनाब, वो कहते थे कि जाफरान जिल्द के खुलियात को नई जिंदगी देता है जिससे झुर्रियां जल्दी नहीं आती हैं, यानी कि एंटी एजिंग का यह काम करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है जनाब वो है संदल, जो कि ठंडा खुशबू और संदल की लकड़ी अपनी बेमिसाल खुशबू और सर्द तासीर की वजह से पुराने वक्तों के हुस्न का एक लाजमी हिस्सा माना जाता था। यानी कि खूबसूरत रहने के लिए पुराने वक्तों में जाफरान और संदल को एक साथ इस्तेमाल कर

जनाब, ये बेमिसाल तासीर, ठंडी तासीर। ऐसे गर्म मौसम में जब जिल्द पर दाने, पिंपल या गर्मी दाने निकलते थे तो संदल की लकड़ी को पत्थर पर अरके गुलाब के साथ घिस कर इसका लेप चेहरे पर लगाया जाता था। इससे जिल्द को फौरी ठंडक मिलती थी और दानों के निशानात गायब हो जाते थे। जनाब कहते हैं संदल का पाउडर जिल्द के मसामों को टाइट करता था जिससे जिल्द लटकी नहीं रहती थी और चेहरा हमेशा तरोताजा और सख्त रहता था। यानी कि संदल के इस्तेमाल से आपकी स्किन लटकी हुई नजर नहीं आएगी। अब तीसरी बड़ी चीज जनाब वो है कुदरती एंटीबायोटिक, जिसको हम कहते हैं जी टर्मेरिक, यानी कि हल्दी कहते हैं। और आप बता रहे हैं कि पुराने वक्तों में इन तीन चीजों का इस्तेमाल होता था। जाफरान, संदल और हल्दी का इस्तेमाल से ही लोग अपने चेहरों को खूबसूरत और प्यारा बनाते थे। तो जनाब ये जो तीसरा चीज है जिसको हम कहते हैं जनाब हल्दी, ये बेसिकली जो है एंटीबायोटिक का काम करती है। बरसोईर पाको हिंद की रिवायत में इस कदर गहरा है इसका ताल्लुक कि इसके बगैर शादी की रसूमात भी अधूरी हैं। पुराने वक्तों में उसे सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि जिल्द का मुहाफिज माना जाता था और इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। शादी का उपटन होता, दुल्हन को शादी से पहले कई दिन पहले हल्दी, सरसों के तेल और बेसन का उपटन लगाया जाता था ताकि शादी के दिन उसका चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ नजर आए। इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, एलर्जी को, सोजिश को, जख्म को ठीक करने के लिए एंटीसेप्टिक खुसूसियात की वजह से इसे फौरी ठीक कर देता था। ये जिल्द की अंदरूनी सफाई

चेहरे की कुदरती रंगत को भी जबरदस्त कर दिया है। ठीक है तो जनाब ये एक रॉयल फॉर्मूला है, ये जनाब बादशाही, ये शाही त्रिविधि है जनाब, जिसके अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं, जाफरान, संदल और क्या है जनाब, जी जनाब जी है हल्दी। तो भाई केसन कैसे पीछे रह सकती है? हमारे माहरीन ना सिर्फ इस वक्त सोचते हैं कि इस वक्त की सबसे ज्यादा लेटेस्ट फार्मूला कौन है, जैसे कि हमने ग्लूटाथियोन का आपको फार्मूला दिया हुआ है, ग्लूटा वाइट रेंज की सूरत में आपको ग्लूटा वाइट हमारे फेस वॉश मिलता है, सोप मिलता है और साथ में हमारी डे एंड नाइट क्रीम है। लेकिन जाफरान से बनी हुई हमारे पास क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है, इसके अलावा जाफरान, संदल और हल्दी से बना हुआ साबन भी आप लोगों के लिए मौजूद है। तो भाई कब शुरू कर रहे हैं आप ये शाही त्रिवती?

जनाब, ये शाही त्रिवेदी यानी कि मैजिकल फार्मूला जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। पुराना वक्त, उस वक्त साबुन बनाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, उस वक्त क्रीम बनाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, और आम तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता था स्किन के ऊपर। लेकिन अब दुनिया तरक्की कर गई है, अब ऐसी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं कि उन्हीं के अंदर उन्हीं के असरात को, उन्हीं चीज़ों को ऐड करके आप वही फायदे हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डे टाइम में, नाइट टाइम में आप ज़ाफरानी क्रीम, केसन की ज़ाफरानी फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो वही आपको शाही गुमान होगा और वही आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे जो उस वक्त की शहजादियाँ और मलकाएँ उसको इस्तेमाल करती थी। दूसरा जो सोप है हमारा, ये आप दिन के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो जनाब इसकी अमेजिश आपके चेहरे के ऊपर वो लेयर छोड़ेगी जो एक सन ब्लॉक आपके स्किन के ऊपर छोड़ता है। पुराने वक्तों में तो सन ब्लॉक नहीं था, लोग कैसे प्यारे रह जाते थे जनाब। यही राज था उनके उन लोगों का जो वो चीजें इस्तेमाल करते थे, उनको सन ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जनाब उसी ट्रेंड को हम मुतारिफ करवा रहे हैं, ज़ाफरानी हमारी रेंज है जो कि ज़ाफरानी क्रीम और ज़ाफरानी सोप की जरूरत में। जी जनाब, उस दौर का जिक्र हो रहा है, उस दौर का जिक्र हो रहा है, और उस दौर का जिक्र हो और उस दौर की किसी कहानी का जिक्र ना हो तो 10-15 मिनट मुझे और देंगे, उसके बाद आप हमें कॉल करेंगे 03449363666। हमारा ये SMS नंबर है, कॉलिंग नंबर, इसके ऊपर आप कॉल भी कर पाएंगे, इसी के ऊपर आप SMS भी कर पाएंगे। आपके इलाके जहां जहां मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, टोंग में सुन रहे हैं, डेर इस्माइल खान में सुन रहे हैं या फिर पहाड़पुर में सुन रहे हैं, हमारी ये प्रोडक्ट आपके इलाकों में हर जगह मौजूद है। किसी भी दुकान पर जाएंगे उससे पूछेंगे केसन की ज़ाफरानी क्रीम, बिल्कुल मिलेगी। केसन का ज़ाफरानी साबुन बिल्कुल मिलेगा। 320 रुपए की क्रीम है और हमारा सोप है वो जो है निस्बतन महंगा साबुन है, क्योंकि जनाब बहुत कीमती चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। 250 रुपए का साबुन है, लेकिन ये साइज में छोटा है, 70 ग्राम का होगा, आपसे 10 से 15 दिन चलेगा। ठीक है जनाब, क्योंकि बाज़ लोग जो है जाके जब देखते हैं कि छोटा सा साबुन है, 250 रुपए इसकी कीमत है, तो घबरा जाते हैं। तो भाई अच्छी चीज़ें हमेशा महंगी होती हैं, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं होना। ठीक है जनाब, और आपने ये इस्तेमाल करना है केसन की ये जो ज़ाफरानी क्रीम है और ज़ाफरानी साबुन है, तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई किस दौर में आप आ गए हैं और ये कंपनी आपको किस दौर में लेके आ।

जी जनाब, कहानी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। जनाब आपको बताया कि पुराने वक्तों में क्या इस्तेमाल होता था कि लोग इतने प्यारे हो गए कि जनाब एक दूसरे के पीछे मर मिटे और कहानियां हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो जनाब एक कहानी है जो कि बहुत मशहूर है, उस वक्त की कहानी है जनाब शहंशाह शाहजहां और मलका मुमताज की।

जी जनाब, जिस तरीके से मलका मलका मलका मुमताज महल और शहनशाह शाहजहां की कहानी अमर हो गई कुर्बानी की वजह से, लाजवाल मोहब्बत खलूस की वजह से, बिल्कुल उसी जोड़ी से मिलती जुलती केसन की ये जाफरानी जोड़ी है। इससे पहले आप लोग हमारी जोड़ी से मानूस हैं, केसन हेयर ऑयल और शैम्पू की जोड़ी, और इसके साथ हमारी स्किन केयर के हवाले से ये स्किन की जोड़ी है जनाब, केसन जाफरानी क्रीम और जाफरानी साबुन की लाजवाल जोड़ी।

और सफेद संगमरमर के जादू से वो शाहकार वजूद में आया जिसे आज दुनिया मोहब्बत की आखिरी आरामगाह और अजूबा मानती है। सामिन इकराम कहते हैं कि इस दास्तान का आखिरी और इबरतनाक पहलू शाहजहां की जिंदगी का आखिरी हिस्सा कि जिसमें मजीद जज्बाती हो जाती है यह दास्तान कि उनके आखिरी अयाम में उनके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने तख्त हासिल करने के लिए अपने बाप यानी शाहजहां को आगरा के किले शाह बुर्ज में नजर बंद कर दिया था। और तारीख बताती है कि जिंदगी के आखिरी साल शाहजहां ने इसी किले में एक खिड़की से दूर नजर आने वाले ताजमहल को देख कर गुजारे। उनकी नजरें अपनी महबूबा के मकबरे पर टिकी रहती यहाँ तक कि 1899 में उन्होंने इसी हाल में दम तोड़ दिया। मौत के बाद उन्हें ताजमहल में ही मुमताज बेगम के पहलू में दफन किया गया और यूं ये दो मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए एक दूसरे के पास लौटे।

जनाब, ये है केसन का टी टाइम, और केसन के टी टाइम में हम आप लोगों को जनाब कहानियां बता रहे हैं उन जोड़ियों की, क्योंकि जनाब जोड़ियां तो केसन के पास भी हैं, जैसे केसन के हेयर केयर जोड़ी, ऑयल और शैम्पू की जोड़ी, और जब हम जाफरानी रेंज की बात करते हैं तो जाफरानी रेंज हमारे पास, जाफरानी साबुन और जाफरानी क्रीम।

लेकिन अब रब की अता है केसन, हर दिल की सदा है केसन, और शिफा ही शिफा है केसन। बहुत शुक्रिया जनाब केसन के ऊपर एतमाद करने का। और गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो जनाब आप लोगों को एक शाही ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं केसन के प्लेटफॉर्म से। टांक में सुनने वालों, पहाड़पुर में सुनने वालों और डेरा इस्माइल खान में सुनने वालों, क्या आपको अपनी स्किन से प्यार है और क्या आप भी कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं जो पुराने वक्तों में शहनशाह, बादशाह, मलका, शहजादे, शहजादियां इस्तेमाल कर चुके हैं और अपने नाम कहानियां अमर कर चुके हैं।

0: तो जनाब अगर ऐसे ही आपने सोच लिया है और इस त्रिवेती को आप यूज करना चाहते हैं, यानी कि पुराने वक्तों की त्रिवेती जिसे हम कहते हैं जाफरान, संदल और हल्दी का मेजेश, और आप लोगों को हम पेश करते हैं जनाब पूरे पाकिस्तान समेत, स्पेशली मैं मुखातिब हूँ डेर इस्माइल खान के लोगों से, पहाड़पुर के लोगों से और टांग के लोगों से, कि आपके इलाके में अगर आप टांग में मौजूद हैं तो जाइएगा जनाब सद्दाम प्लाजा, टांग के अंदर मौजूद है सद्दाम प्लाजा, वहां पर है मंसूर जनरल स्टोर। देखिए जनाब मंसूर जनरल स्टोर के ऊपर जाएंगे तो जनाब वहां पर आपको किशन की जाफरानी क्रीम, नाइट क्रीम मिलेगी, इसके ऊपर जाफरान पड़ा होता है। ठीक है जनाब, जैसे आप क्रीम की डब्बी खोलेंगे तो जाफरान की, सॉरी जो क्रीम की ऊपर वाली लेयर होती है, सफेद क्रीम होती है, क्रीम कलर की क्रीम होती है, उसके ऊपर दो तीन कोंपलें पड़ी होंगी और उन कोंपलों को आपने क्रीम के अंदर मिक्स कर लेना है और उसके बाद इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। ठीक है जनाब, साथ में हमारा जाफरानी सोप है जिसके अंदर आपको जाफरान जो है सोप के अंदर नजर आएगा, आपको संदल के टुकड़े साबुन के अंदर नजर आएंगे और ये खुशबू आपको एहसास दिलाएगी कि एक शाही प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। केसन से त्रिवेती, केसन का जाफरानी साबुन और केसन का जाफरानी साबुन के साथ जाफरानी क्रीम जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जनाब। फिर बताइएगा कि क्या इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से या जाफरानी साबुन के दिन के वक्त, स्पेशली समर के सीजन में, गर्मी के सीजन में इस्तेमाल करने से क्या आपको क्या सनब्लॉक की जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब 03449363366 03449363366 03449363366। ठीक है जनाब 03449363366 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, एसएमएस नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और दूसरा अगर आप जोंग पर करना चाहें नेटवर्क का इशू तो 03137983454। डेर इस्माइल खान से हमें लोग मैसेजेस कर रहे हैं, आमिर आवान पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं सलाम स्वीट ब्रो। हाँ जी खलील आपसे गुजारिश है कि मैं केसन ग्लूटा वाइट क्रीम, हाँ जी ग्लूटा वाइट क्रीम वाइट भिजवा दें ताकि वो किसको भिजवा दें भाई, बेचारी भी चिट्टी होकर आपको दुआ दे, लास्ट में जुल्फकार अंकल शबरा उस्ताद को सलाम। केसन ग्लूटा वाइट क्रीम विथ वाइट कीजी किसको भिजवा रहे, किसको भिजवाने की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ
1: रहा। के दफा वाली
0: कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जनाब कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना मोहतरम
2: जी? मैं तो टांग से बोल रहा हूँ, बाबा बरकी।
0: बाबा बरकी बात कर रहे हैं, बाबा बरकी को अपने टी टाइम में वेलकम करते हैं। बाबा बरकी कब से सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आप?
2: तकरीबन दो माह हो गया।
0: दो माह के बाद, इतने देर के बाद आपने हमसे मुलाकात की आज?
2: हाँ बिल्कुल, नंबर नहीं मिलते हैं, तेरे नंबर को मुश्किल होता है।
0: अच्छा आज इसलिए मैंने आसान आसान सा सोखा सोखा नंबर बताया, मैंने कहा हर कोई नोट कर ले।
2: ये नंबर नहीं है, ये नंबर टांग में तो लोग इस तरह है कि जल्दी जल्दी वो नहीं नोट सकता है, नोट कर सकता है।
0: इसलिए मैंने आराम आराम से आंदा आराम आराम से बताएंगे।
2: आराम आराम से बताएं तो सारे लोग फिर नोट कर सकते हैं।
0: अच्छा ठीक है जी। बाबा बरकी एक दो महीने हो गए, एक महीना हो गया, मेरे दूसरा महीना शुरू है, केसन की कुछ समझ आई है कि ये क्या बेचना चाह रहे हैं टांक वालों के ऊपर?
2: जी बिल्कुल ठीक ठाक है यार, ये तेल नहीं है शिखा, ये दर्द ये कमर जोड़ो पटो हर चीज के लिए बेहतर है।
0: ये कमर के लिए बहुत जबरदस्त है, ये पटों के दर्द के लिए बहुत जबरदस्त है, कहीं पर भी जिस्म में आपको दर्द हो, हड्डी के ऊपर दर्द हो, चाहे गोश्त के ऊपर दर्द हो, आप इसके 8-10 कतरे डालकर इसको मालिश करें और सिर्फ 5 मिनट इंतजार करें और फिर बताइएगा कि वो आपका दर्द कितना था और किधर चला गया। अगर बहुत पुराना आपका दर्द है तो आप 3 दफा इसको इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो 2 दफा या फिर 1 दफा भी इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि आपको कहीं कोई चोट लग गई है, ठीक है स्पोर्ट खेलते हुए या कोई चीज लग, 1 दफा इस्तेमाल कर रहे हैं बस आपका दर्द खत्म रहेगा। बहुत पुराना दर्द हो तो उसके लिए सुबह दोपहर शाम 3 दफा इसकी मालिश जरूर करें।
2: अच्छा,
0: और इसको थोड़ा सा अगर हल्का सा गर्म कर लें, हल्का सा गर्म कर लें तो और ज्यादा अच्छा होता है।
2: बस ठीक है सर जी, इसका कीमत कितना है?
0: इसकी कीमत है 700 रुपए, 60 ml की ये बोतल होगी, लेकिन थोड़ी सी लगेगी और आपकी जान छूट जाएगी। यकीन कीजिए, गोलियों के ऊपर आप लोगों ने हजारों रुपए लगा लिए होंगे, 700 रुपए सिर्फ इसके ऊपर लगाकर भी देख लें। और मनी बैक गारंटी है भाई, आराम ना आए तो दुकानदार को वापस कर दीजिएगा और उसे 700 रुपए वापस ले लीजिएगा। ठीक है भाई,
2: ये मंसूर जनरल स्टोर में मिलता है?
0: बिल्कुल मिल जाएगा, मंसूर पर जाएंगे तो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी। हमारे साथ मौजूद थे बाबा थे कौन थे? हाँ जी, हाँ जी जनाब, वेस्ट इंडीज। अच्छा जी, ये कहते हैं कि वेस्ट इंडीज भिजवानी है ग्लूटा वाइट के ओ भाई, ग्लूटा वाइट को हम कहते हैं सावले बंदों को गोरा करने वाली क्रीम है। तो ग्लूटा वाइट की तो हमारी पूरी रेंज है, लेकिन आज भाई इस खुमार से ना निकलने देना यार। ये जो जाफरानी का खुमार मैंने आपको बताया है, ये जो त्रिवृत्ति बताई है आप लोगों को, इससे ना निकलें। ग्लूटा वाइट के लिए और दिन पड़े हैं, और किसी दिन बात कर लेंगे, लेकिन अभी इसी शहर के अंदर रहें कि जनाब पुराने दौर के वक्तों की शहजादियां, शहजादे, मलके, मलके, मलका, मलकाएं, ये भाई सारी यही चीजें इस्तेमाल करती थी, संदल, जाफरान, हल्दी। तो भाई हम उन्हीं चीजों को आप, ये तो वो कंपनी है भाई जो कुदरत के खजाने आपकी तरफ लेके आती है, केमिकल प्रोडक्ट से बहुत दूर, केमिकल इंग्रेडिएंट से बहुत दूर। आप लोगों को हम जो है कुदरत के खजाने आपकी दस्तरस तक पहुंचाते हैं, वो भी साबुन की सूरत में, क्रीम की सूरत में। और यार इनको लगाएं और हमें आके फोन के ऊपर बताएं, भाई खलील भाई आप तो ड्रामे करते हो या वाकई सच्ची बातें करते हो? भाई हम तो कहते हैं ये हर रोज आप लोग की खिदमत में हम हाजिर होते हैं, इतना बड़ा जिगरा है हमारा, तीनों स्टेशन से एक साथ आते हैं भाई, तीनों में हो सकता है किसी को रिजल्ट ना भी मिले हो, लेकिन फिर भी हमारा जिगरा तो देखें भाई, इतने बड़े जिगरे के साथ हम इधर बैठे होते हैं आप लोगों के सामने कि भाई हर तरह की बात आपकी हम सुन सकते हैं। ठीक है जनाब, और कौन है? कहते हैं कि पहाड़पुर में आपकी आवाज जो है वो कट रही है, मोहम्मद अजहर भी गुजारा करें। मैंने कहा आज वहां पर नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है। अच्छा जी, आज बहुत दिनों बाद जो है, बहुत दिनों बाद कौन आया है? मैबल शरीफ से चौधरी आरिफ। अच्छा जी, कौन है?
3: संवलापन भगाए, हर फिकर का हल, हर रंग को निखारे,
0: मोहम्मद कुर्बान शेख जोक कांजन से हमारे साथ हैं। लेकिन मजे की बात है, इन्होंने सारा का सारा मैसेज जो है वो सरेकी शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, तो सरेकी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सलाम के लिए क्या हाल है? टांग से अनीसा हूँ, और ईद कैसी गुजरी है? केसन का नाम चांद पे लिखने को जी चाहता है मगर। जी जी टांग वालों, आपकी शहर की शहजादी अनीसा कह रही है, केसन का नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है मगर, एक तो मेरा हाथ नहीं जाता और दूसरा अम्मी ने ज्यादा दूर जाने से मना नूर जाने से मना किया। जी चलो जी, बात है कहते हैं लास्ट में माँ नूर को और सब सुनने वालों के सलाम। अनीसा मेरी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी है और आपके सामने मौजूद हूँ। और एक दफा फिर से हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप, 03449363366, 03-344-936-3366। अच्छा, टांग के अंदर जो है सिर्फ मंसूर जनरल स्टोर के ऊपर नहीं, जितने भी सदर प्लाजा है, अजीम प्लाजा है, या जितनी भी दुकानें हैं डबरा में, जितनी दुकानें हैं, आप जहां पर भी जाएंगे आपको केसन के प्रोडक्ट, और स्पेशली ये जो हमारी प्रोडक्ट है जो कि शाही प्रोडक्ट है, हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही प्यारी प्रोडक्ट है खवातीन के लिए, स्पेशली दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, शाइयों को ख़त्म करने के लिए, रंग को गोरा करने के लिए, स्किन को चमकदार बनाने के लिए और स्किन की हिफाजत करने के लिए। भाई गर्मियों के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है गर्मी के अंदर, वो होती है जनाब आपकी अपनी स्किन की हिफाजत। ठीक है जनाब, और ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन की हिफाजत करे। ठीक है जनाब, गर्मी के अंदर ये चीज मैटर नहीं करती कि आप कितनी महंगी चीजें इस्तेमाल, आपकी महंगी चीजें जीरो हो जाएंगी अगर आपने सूरज मियां से अपने आप को नहीं बचाया है, आपने सूरज से अपनी हिफाजत नहीं की है, सूरज की शुआओं से आपने अपनी स्किन को महफूज नहीं रखा है, आपकी सारे लाखों रुपए, हजारों रुपए की महंगी चीजें किसी काम की नहीं है। तो गर्मियों के अंदर जो चीज मैटर करती है वो आपकी हिफाजत है, कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी हिफाजत कर रही है। सलाम ब्रो, आई एम सनम फ्रॉम टांग। भाई कल आपका वॉइस कट गई थी और मैंने सिरप का बहुत पूछा था और मैंने कल गो पिंपल फेस वॉश भी ले लिया है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है सनम, टांग से आप हैं और बिल्कुल कल आपके मैसेज मैंने एंड के ऊपर देखे थे और आखिर में मेरे ख्याल में तीन चार मिनट हमारी आवाज कट गई थी। और तो जनाब ये कह रही है कि हाजमा कंट्रोल सिरप जो है मंसूर के पास नहीं है, नहीं होगा बिल्कुल भी, ईद से पहले का शॉर्ट है आपके टांग में। तो टांग वालों थोड़ा सा सब्र कर लो, और आज के दिन है मंगल के दिन है, बुध वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों को गुड न्यूज मिलेगी, बल्कि डियर इस्माइल खान और पारदूर के लोगों को भी गुड न्यूज मिलेगी कि भाई वो प्रोडक्ट जो हमारी पिछले 10-15 दिन से शॉर्ट हो गई थी वो फिर से मार्केट में आ गई है, और वो है हाजमा कंट्रोल सिरप।
1: केसन नेचुरल्स स्ताद बावर नशा पहर चांस की के ये मीना औरणा
0: जी। जनाब नौमी मजबूर भी फेसबुक लाइव के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि गुड शो है। शेर वली जो है ये डोहतर अड्डा के ऊपर हमें सुन रहे हैं फेसबुक लाइव के थ्रू और कह रहे हैं कि हाजमा कंट्रोल सिरप और शैम्पू तो भिजवा दें। ये दुकानदार हैं भाई,
4: लाइव सेट है ब्रो।
0: सलाम भी कह रहे हैं, सुबह वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आप किसन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीजें सारी चीज टांक और पहाड़पुर वालों को सलाम कर। नौमी मजबूर टांक और पहाड़पुर और डेरे वाले दुश्मन है तुम्हारे नौमी, क्या डेरे वाले दुश्मन है जो डेरे वालों को सलाम नहीं कह रहे हो तुम। चहकान से हमें सुन रहे हैं जनाब, और अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खलील भाई, कैसे हैं खलील भाई। मैं खालिद चहकान से हूँ, शो जबरदस्त है आपके, तीनों एफएम पर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, पहाड़पुर पर भी बिल्कुल आपकी आवाज ठीक आ रही है, यानी कि अभी तीनों स्टेशन के ऊपर जो है एक सेम आवाज होती है, तो ये लोग चेक भी कर रहे होते हैं। सो बिल्कुल जनाब, नेट का कभी कभी इश्यू होता है क्योंकि ये लिंक के थ्रू आपकी तरफ प्रोग्राम पेश किया जा रहा होता है, तो इस वजह से जो है कभी कभी मसला होता है। अच्छा जी, आरजे तासीर जो है हमारे भाई जो पश्तो प्रोग्राम करते हैं आप लोगों के साथ, उनका जो हमने शेड्यूल सेट किया है वो जुमा हफ्ता और एतवार, ठीक है जनाब, तीन दिन नोट कीजिएगा, जुमा हफ्ता और इतवार तीन दिन जो होंगे वो आरजे तासीर जो है वो आप लोगों के साथ केसन का प्रोग्राम करेंगे, और मैक्सिमम पश्तो में प्रोग्राम इसलिए हमने वो सेट किया है ताकि टांग लोग टांग के अंदर हम जो है किसी को बताइएगा मत, नंबर वन कंपनी बनना चाहते हैं तो जनाब उसके लिए फिर हम मेहनत भी उतनी कर रहे हैं कि नंबर वन कैसे बनेंगे भाई, टांग के अंदर हर दुकान के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड केसन की, और ऐसा ही होता है, केसन जहां पर भी पांव रखती है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम लगता है, लेकिन एक वक्त आता है कि भाई हर दुकानदार के पास सबसे ज्यादा जिस कंपनी की डिमांड होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह केसन होती है, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है जनाब, इसमें झूठ की कहीं बात नहीं है, हमारा एफएम डेरा इस्माइल खान में चल रहा है, हमारा एफएम पहाड़पुर में चल रहा है, आपका कभी भी इन इलाकों में आना जाना हो तो कभी ओवरव्यू भी कर लिया करें और पूछ लिया करें कि भाई कौन सी कंपनी इस वक्त ट्रेंडिंग है, तो आपको आवाज आएगी, और जो आएगी फिर वो मुझे जरूर बताइए क्या कि वो कौन सी आवाज थी, ठीक है जनाब। और कहते हैं कि नौमी मजबूर जो है वो कहते हैं कि डेरे वालों के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ये बेवफा लोग हैं। मोहम्मद हमजा खेमटा भी फेसबुक लाइव के ऊपर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज हम जो है ग्लूटा क्रीम कहते हैं कि ग्लूटा क्रीम क्या वाकई रंग चिट्टा करती है, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, आपकी बॉडी के अंदर मैं बहुत दफा बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपके जिस्म के अंदर जो खून होता है ना, खून ब्लड जो होता है, ब्लड इसका काम होता है आपको ताकत देना, खून की कमी होती है तो कमजोरी हो जाती है, लड़खड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, चक्कर आते हैं, क्या होता है खून की कमी होती है, जब खून की बोतल लग जाए आप आयरन की टेबलेट वगैरह खा लें सेट हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरीके से ग्लूटाथियोन आपका जिगर बनाता है, ठीक है जनाब, ग्लूटाथियोन जो होता है ना ये एक एंजाइम इसे कह लें जो आपका जिगर बनाता है, लेकिन जब आपका जिगर इसे कम बनाता है तो आपकी रंगत सांवली होने लगती है, लेकिन जब आप ग्लूटाथियोन से बनी हुई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फेस वॉश है, जैसे कि साबुन है, जैसे कि क्रीम है, तो जनाब ये आपकी स्किन की ब्राइटनेस को एकदम से बढ़ा देता है, ठीक है जनाब, आपकी स्किन एकदम से गोरी होना शुरू हो जाती है। और कल हम कहाँ पहाड़पुर में मौजूद थे तो वहाँ पर बंदा कह रहा था, जैसे जिक्र हुआ ना हमारे फेस वॉशेज का, तो वो बंदे ने कहका लगाया और उसने कहा कि यार ये जो फार्मूला आया है ना ग्लूटाथियोन का, इसने बर्बाद कर दिया हमें, उसकी कोई और कंपनी थी उनका भी ग्लूटाथियोन नहीं था, तो कहते यार बर्बाद कर दिया हमें इस फार्मूले ने, हर कोई यही मांगता है क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट है इसकी जनाब, और ये बहुत ही प्यारी ट्रीटमेंट है ग्लूटाथियोन की, जिनका भी रंगत भाई सांवली है, सांवले हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा, हमारा एड भी चल रहा होता है अक्सर और उसके अंदर भी यही बात बताई जाती है कि सांवले लोगों के लिए जो प्रोडक्ट है ना वो ग्लूटा ग्लूटा वाइट है, केसन ग्लूटावाइट सोप, केसन ग्लूटावाइट फेस वॉश और केसन ग्लूटावाइट डे एंड नाइट क्रीम। मोहम्मद अमजद केमटे कहते हैं फ्रॉम मुजा वाली पिपला से, कहते हैं खूबसूरत प्रोग्राम है और सबको सलाम कह रहे हैं मोहम्मद। अच्छा जी मोहतरम खरीद साहब, शेख अवतार सलाम, शेख अवतार टांग से फतेहुल्ला मास्टर खलील भाई, बाबा बरकी के साथ पछतो बोला करें बल्कि टांक वालों के साथ थोड़ा थोड़ा पछताओ। अच्छा जी पछतो बोलने के लिए पहले पछतो सीखनी बहुत जरूरी है। असीर को मैंने कहा है कि यार थोड़ी सी पछतो, इतनी सारी तुम्हें आती है, एक ड्रिप मुझे भी लगवा दो। अब हमारे साथ रह रहकर ना हमने उसे सरेकी सिखा दी है यार, हम सरेकी वालों को कितना बड़ा दिल है। असीर हमारे साथ जो है बहुत ज्यादा वक्त गुजरा है ना हमारे साथ रेडियो के ऊपर, बहुत ज्यादा हमने एक साथ बात गुजारा,
1: कुदरती
0: तो हमने उसे सिराकी सिखाई है, कोई भन्नी त्रुटि जो भी सिराकी है हमने उसे सिखाई है, लेकिन उसने हमें भन्नी त्रुटि पछतो नहीं सिखाई यार। ये देखिए ज्यादती क्यों हुई, तो अभी मैं इसको कहूंगा कि भाई या तो हमारी सिराकी वापस करो या फिर हमें पछतो सिखाओ, या तो तुम शो में सिराकी नहीं बोलोगे या फिर हमें पछतो सिखाओगे। तो क्या नाम है मास्टर साहब, इस दफा जब शो के ऊपर आए ना तो उससे पूछना है आपने कि भाई या तो खलील भाई को सिराकी वापस करें आप, ठीक है, या खलील भाई को पछतो सिखाएं। इस तरह नहीं चलेगा कि यार तुम हर फन मौला बनकर बैठ जाओ, सराकी भी तुम बोलो, पछतो भी तुम बोलो, उर्दू भी तुम बोलो, और हम जहाँ पर मुंह देखते रहे कि हमें उर्दू के अलावा और सराकी के अलावा कुछ भी ना। सराकी वैसे मूंग घटल है ना, ठीक है जनाब, तो टांकी जी मैं सुना है कि बहुत ज्यादा लोग सराकी अलावा डाले सही, तो कोशिश रेस हूँ कि सराकी अलाऊ, लेकिन चूंकि पहाड़ पूरी सारा सराकी है, लेकिन उतने ही सराकी का प्रोग्राम नए करें हर वे उर्दू लेंदे रहने टांक दे जरूर इंशाल्लाह, बल्कि टांक के हूं त्रिए इलाके सब इकट्ठे सुनते पे आने टांक पहाड़पुर ते नाल डेर इस्माइल खान। अच्छा जी डेर इस्माइल खान में हमारी जो प्रोडक्ट है वो जफराबाद में हाजी जरी जनरल स्टोर एंड अब्दुल रहमान जनरल स्टोर फैसल मार्केट, वहां पर जरूर जाइएगा। और जो बहने भाई अच्छा पहले खुशखबरी जफराबाद को लिए, जो ब्यूटी स्प्रे मांग रही थी लड़कियां और उनको जफराबाद में नहीं मिल रहा था, कल आपने जाके पता करना है अब्दुल रहमान जनरल स्टोर हो गया या हाजी जरी जनरल स्टोर हो गया, इनके पास जो है हमारा जो ब्यूटी स्प्रे है इंशाल्लाह जी कल पहुंच जाएगा। ब्यूटी स्प्रे क्या है बेसिकली, ये अर्के गुलाब है, जिस तरह अर्के गुलाब होता है ना, अर्के गुलाब की बोतल होती है उसी तरीके से ये अर्के गुलाब है, लेकिन ये सिर्फ अर्के गुलाब नहीं है, इसके अंदर एलम भी शामिल है, इसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद है। विटामिन सी जो होता है ये बेसिकली ये भी नेचुरल सनस्क्रीन है, सनब्लॉक का काम करते हैं विटामिन सी, जब आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये सूरज की खतरनाक चौं को डिस्पर्स करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हम इसलिए कहते हैं कि गर्मी के अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल करें और हमसे गारंटी ले लें कि आपकी स्किन काली नहीं होगी। नंबर वन हमारा कोई एक अच्छा सा फेस वॉश आप रोजाना रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर लें, जैसे ग्लूटावाइट फेस वॉश है, जैसे गो पिंपल है, जैसे चारकोल है, या फिर जैसे कि लवली फेस वॉश है। सबसे पहले चेहरे को धोएं जनाब फेस वॉश से, उसके बाद ऐसे थस थस थस करके जी जनाब अपने चेहरे के ऊपर स्प्रे कर दें और उस पानी को ऐसे पंखे के सामने टहरेंगे तो खुश्क हो जाता है, या फिर हाथ से भी ऐसे खुश्क कर सकते हैं, बस वो तह आपकी स्किन के ऊपर रहे और फिर आप महफूज हैं सूर्य की खतरनाक चौं से, तो इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। इसके अलावा डेर इस्माइल खान में जो है चुगल्ला के साथ फारूक जनरल स्टोर है, फारूक जनरल स्टोर अमान हारसेरा, यहाँ पर आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। कमर्शियल मार्केट के अंदर फैमिली शॉपिंग सेंटर है, चाइना गिफ्ट सेंटर है जनाब, कमर्शियल मार्केट के अंदर चाइना गिफ्ट सेंटर है, आप वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गोमल मार्केट में है तो जनाब शीश महल, अल फरीद कॉस्मेटिक, मक्का मबरूका, ठीक है जनाब, गुलजार मस्जिद के साथ विकी कॉस्मेटिक, इन सभी जगहों पर जुबी जनरल स्टोर सबके पास आपको केसन मिलेंगे। इसके अलावा जनाब डेर इस्माइल खान के अंदर शीश चौक के ऊपर हमारी दो बड़े सेल पॉइंट है जनाब, एक मजार वाली गली में उमर जनरल स्टोर और शेख यूसुफ चौक के ऊपर है बिल्कुल जाहिद शॉपिंग सेंटर, और सीआरबीसी चौक के ऊपर महमूद जनरल स्टोर जो कि पहले वसीम जनरल स्टोर होता था, तो आप वहां पर हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। पूरा पहाड़पुर भरा हुआ है जनाब, और पहाड़पुर में कहां कहां नवीद हो गया, जीशान हो गया, इन तमाम दुकानों के ऊपर आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारे साथ सोनिया आपी आ चुकी है। सोनिया आपी, अचानक मेरी नजर अपनी चाय के ऊपर पड़ी है और चाय तो ठंडी हो गई, अब क्या करूँ, पी लूँ या रख लूँ?
4: एक घंटा हो गया है चाय
0: पिलाए हुए। एक घंटा बिल्कुल, आज मुझे शो से 10 मिनट पहले चाय मिली और अभी जाके आधा कप तो रह गया, फिर रहने दूँ या पी लूँ इसको?
4: दोबारा गर्म कर ले या दोबारा बनवा ले।
0: दोबारा बनवा लें या दोबारा गर्म करवा लें। चलो ठीक है, आपका मशवरा मैंने मान लिया।
4: शाहजहान, मेरे ख्याल शाहजहान साहब ने तो वो जो बादशाह थे हमारे, उसने तो शाही महल बनवा लिया ना, तो मैंने कहा क्या मलिक साहब से एक दो कनाल मैं ले सकती हूँ केसन लगा के।
0: मलिक साहब आपकी वैसे शर्त तो रखनी चाहिए आपको भी ना, लेकिन बशर्ते कि इंतहाई किस्म की मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है जनाब, अमर घर रहने वाले। अब ये शर्त तो अब पूरी होती है तो फिर तो 8-10 कनालें भी आपके नाम हो सकती हैं। केसन लगाती हैं तो बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जनाब केसन का तो वादा है खूबसूरत रखने का और खूबसूरत बनाने का। तो वो देखिए भाई, 22 साल उस बंदे ने लगा दिए एक मुर्दा बीवी की उसको पूरा करने के लिए, और माशाल्लाह उसे 14 बच्चे भी पैदा किए। ठीक है जनाब, और जो है ना इतनी मोहब्बत फिर भी खत्म नहीं हुई मोहब्बत।
4: और नौ भी मशहूर प्रोग्राम में फिर से वेलकम कहते हैं,
0: वो कहते हैं बेवाल हो गए डेरा के, मैं बात नहीं करता हूँ, सलाम भी नहीं दे रहा हूँ।
4: अच्छा,
0: वो मना लेंगे। और आप सुनाए की क्या आप
4: लड़कियों को ना समझे, अच्छी है।
0: अच्छा चलो, अच्छा ये

0: अंडाची
1: वो संदल है इसके अंदर ना, संदल संदल की लकड़ी इसके अंदर मौजूद है। और वही जब वो ही साबुन की सूरत में जब आपकी स्किन के ऊपर फैलता है चेहरे के ऊपर, तो वो उसने अपना असर तो छोड़ना होता है ना आपकी स्किन के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका, और हम आप हमारे तकरीबन हर प्रोडक्ट यूजर को थैंक यू जी। सब तीनों स्टेशनों वालों को
0: सलाम।
1: ओके जी, तीनों स्टेशनों वालों को सलाम कह रही हैं सोनिया पीटी रसमिल खान से। एंड कौन है जनाब, नंबर इन्होंने नाम नहीं लिखा और पूछ रहे के। अच्छा जी, कहते हैं कि ग्लूटा वाइट की डब्बी कौन से रंग की है। ग्लूटा वाइट की डब्बी जो है वो वाइट कलर की है, बिल्कुल वाइट कलर की है, ठीक है जनाब। और हमारी वाहिद क्रीम है जो 30 ग्राम की है, बाकी कंपनियों के जितनी भी ग्लूटा वाइट क्रीमें हैं ना वो 17 ग्राम की हैं, याद रखिएगा, ठीक है जनाब। बाकी जितनी भी कंपनियों की क्रीमें हैं वो 17 ग्राम की हैं, 17 ग्राम की हैं। हमारी जो ग्लूटा वाइट क्रीम है वो 30 ग्राम की है, बड़ी डब्बी है, और इसके ऊपर लड़की की तस्वीर बनी होगी, लड़की का आधा हिस्सा जो है वो काला होगा आधा चेहरा, और आगे आधा चेहरा जो है वो बिल्कुल जी वाइट होगा। तो आपने लेनी है केसन की ग्लूटा वाइट, दुकानदार को आपने बोलना है कि भाई सिर्फ ग्लूटा वाइट नहीं, केसन की ग्लूटा वाइट। यानी कि अगर हम कलर्स की बात करें तो हमारी डब्बी के अंदर दो कलर हैं सिर्फ, ठीक है जनाब, एक वाइट और दूसरा रेड। ठीक है जनाब, रेड एंड वाइट डब्बी है, यानी कि वाइट कलर की डब्बी है। अंदर जो डब्बी होगी, जार होगा, वो भी वाइट कलर को होगा, और उसके ढक्कन के ऊपर ना ऐसे गोल्डन कलर की पन्नी चढ़ी होगी, ठीक है जनाब, बिल्कुल वाइट डब्बी होगी और ढक्कन के ऊपर गोल्डन कलर की पन्नी चढ़ी हुई होगी, ये निशानी है। और डब्बी का जो ऊपर का जो कलर होगा वो क्या होगा जनाब, रेड एंड व्हाइट कलर का होगा।
2: चेहरे की चॉइस है,
1: तो आप याद रखिएगा केसन की डब्बी की जो पैकिंग है वो आपने नोट कर ली है। हमारा नंबर एक दफा फिर से आप नोट कर लीजिए, 0344-936-3366, ठीक है जनाब, 0344-936-3366 ये हमारा नंबर। आखिरी कॉलर रहेंगे उसके बाद, और उसके बाद इजाजत चाहेंगे आप लोगों से जनाब, टाइम हमारा खत्म हो गया है। खालिद हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं खालिद भाई।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ खालिद, आप सुनाए, अच्छे हैं, खैरियत से हैं, बिल्कुल। कौन सा एफएम सुन रहे हैं?
3: अल्लाह का शुक्र है, मैं एफएम तीनों सुन रहा हूँ। मैं एफएम पहले मैंने दिए खान लगे थे, पारपुर लगे थे, तो उसने बोला कि आवाज का मसला, मैंने कहा यार चल चेक करते हैं।
1: अच्छा,
3: मैंने जब लगाई तो बिल्कुल आवाज ठीक थी।
1: अच्छा, वो नेट का कभी कभी आवाज कट रही होती है ना, तो आप डेर इसमिल खान को सुन रहे थे? अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल आखिरी एक मिनट में आए हैं।
3: मुझे एक बात का जवाब दे। हाँ हाँ, ये यार ये जो जितने भी सॉन्ग है ग्रीन है, सब यार लड़कियों की तस्वीरें क्यों हैं, हमारे क्यों नहीं है यार?
1: लड़कियां खूबसूरत होती है ना, इसलिए होते हैं भाई, लड़कों की तस्वीरें
3: तो यार क्या हम नहीं है या, हम यार हम क्या इस्तेमाल नहीं करते।
1: डाल दिया तुमने तो यार, बात तो वैसे ठीक है, तुमने बात तो बड़ी लॉजिकल की, लड़कों की तस्वीरें क्यों नहीं होती, लड़कियों की
3: यार हम उनकी क्यों यार इस्तेमाल, क्या लड़के भी करते हैं?
1: लड़के भी करते हैं सारी चीजें। अब लक्स जो है उसके ऊपर सिर्फ लड़कियों की तस्वीरें होती हैं, रीमा साहिबा इनकी, लेकिन पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। ये वैलिड सवाल है आपका जनाब, हम भी इसके ऊपर सोचेंगे और दूसरी कंपनियों को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद आपका, थैंक यू।
3: ओके, ये सवाल मैं कल के लिए जा रहा
1: हूँ। जी जी बिल्कुल जी जनाब, तो ये खालिद हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया जनाब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी।

ओके सी नेक्स्ट कलर ऑफ द शो. अस्सलाम वालेकुम. ओके तासी रेडियो अनकडे वसी रेडियो बंद वे खासी. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वेलकम टू दी नोटेंशन ब्यूटीफुल शो. और आपको स्पेशल सलाम मेरी तरफ से, सब सिस्टर को सलाम. और भाई जान आपको 10 बजे टाइम बहुत बहुत मुबारक है. सब सिस्टर को सलाम मुबारक शाज अमर वडेर मनन छ खुशाल है. अच्छा नूर कॉल से कम देखे ना अरे तमक वे खास हुई से मिस रगले आशा मिलो मन से खबर नूर को से अगेन पास से कम देखे ना बेटा सुसन अज गपश पे लगो मत 11 बजे ना बात खास. और सलामुना भाई जान सिंह है. अरे वाह भाई बहुत टाइम बाद नोटेंशन पूरा घंटा शो में वेलकम कहते हैं भाई. बहुत मजा आ रहे हैं, इतना मजा कि इतना मजा का कि शो भी आधी रात में भी मैंने बहुत ज्यादा वेट किया था कि शो कब घंटा होगा. आज बहुत ज्यादा खुश हूँ. आई एम नोटेंशन फैन मनाल बफरीदी. देर मना खुशहाल है.

0: ओके सी चेरस मकता आप चक्कर लुटी नेक्स्ट कलर गुरु मसूक दे रहे थे कम से ने दी और सुबह वाई सी न बिल्कुल फल फरमाइश रहता केवल ऐसे ही पौसे फर 963-511-400 सी बांधे जी कल ओके जी फल फरमाइश कम देखना का मासरा केवल ऐसे अस्सलाम वालेकुम ओके डेर जात मन तासु कॉल ड्राफ्ट 0963-511-400 सी बांधे जी बिल्कुल कल केवल ऐसे कम फरमाइश में मासरा केवल ऐसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी
1: محمد
0: علی صاحب کما گانا بابر دل باڑے
1: شہید
0: انتظار کا واہ ڈیرا مانا خوشحال شہید ٹول ناول سے کم نظم گورو دڑی خان فرمائش کرے دعوا ورے